सजनवा बैरी हो गए हमारे भैया, आप सुन रहे थे सुनने वालों। किसी राह हमें किसी मोड़ पर कहीं जल न देना तू छोड़कर मेरे हम सफर, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं सुनने वालों।

किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफ़र। लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, गुमराह है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं इन हवाओं में इन फिजाओं में।

पहले आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किया है। सुनने वालों, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए जी डरता है कहीं भूल से तू ना समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: फ्रॉम द मूवी लीडर से हमने पेश की है सुनने वालों तेरी हुस्न की क्या तारीफ करूं। अभिनेत्री इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सारेगामा पा पा।
1: बोलो
2: हसा मत बोलो

फिल्म अभिनेत्री से हमने पेश किए है सुनने वालों सारेगामापा। अभी आप सुन रहे थे मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। रखवाला है फिल्म का नाम।

मेरी दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, आप सुन रहे थे सुनने वालों, फिल्म का नाम है सीमा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जब ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है। मोहम्मद रफी जी के साथ में शारदा जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, शाडा के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सीमा से हमने पेश किए है। सुनने वालों, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, सरस्वती चंद्र है फिल्म का नाम। चलिए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुकेश जी की आवाज़ में।

हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सरस्वती चंद्र से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कन्हैया है फिल्म का नाम। एक बार फिर से मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अभी आप सुन रहे थे नमायती मुकेश जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी कन्हैया से हमने पेश किए हैं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

0: पे।
1: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, गायत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।
2: लेकिन जब उतरता है

दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो ना आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए है सुनने वालों। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, परिवार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी परिवार से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, मोहम्मद रफ़ी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अनोखी अदा।

0: राकेश नमस्ते, ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है,
1: लाइए ना।
0: ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा।

तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनोखी, अदा से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, मोहम्मद रफी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी रखवाला से। अपने

दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रखवाला, से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लता जी आपको सुनाने वाले थे तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

ने मुझे देखा होकर मेहरबा, तीसरी मंजिल से हमने पेश किया है सुनने वालों, फ्रॉम द यानी मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। चुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से।

चुप गए सारे नसारे, ओए क्या बात हो गई। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।

गोरी रंग पीना इछलिया है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे टूटे हुए दिल से। कोई तो आके पूछे कि तेरा हाल क्या है।

नमाइती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, फ्रॉम द मूवी छलिया से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। मधुमती है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं टूटे हुए ख्वाबों ने। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

भूले से मोहब्बत कर बैठा नादा था बेचारा, दिल ही तो है अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। बहुत ही दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। फ्रॉम द मूवी सूरत और सीरत, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द माइटी मुकेश जी।

सूरत और सीरत है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश की है बहुत दिया देने वाले ने तुझको। मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी आप आए बाहर आए। दिल तेरा दीवाना इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुझे कितना प्यार है तुमसे।

लता और मोहम्मद रफीजी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना, मुझे कितना प्यार है तुमसे। जिंदगी में आप आए हो गए दुनिया हंसी, फ्रॉम द मूवी छलिया से हम पेश करते हैं सुनने वालों।

जिंदगी में आप आए हो गई दुनिया हंसी, भर गया फूलों से दामन, अब कमी कोई नहीं। लीडर है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तेरी हुस्न की क्या तारीफ करूं।

फ्रॉम द मूवी लीडर से हमने पेश की है सुनने वालों तेरी हुस्न की क्या तारीफ करूं। मोहम्मद रफ़ी के साथ में सुमन कल्यारपूंजी आपको सुनाने वाले हैं तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे।

रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स हम आप सभी के वास्ते पेश करने वाले हैं। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सहेली से हम पेश करते हैं जिस दिल में बसा था प्यार तेरा।

जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, अभी आप सुन रहे थे रमाइती मुकेश जी की आवाज़ में। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला।

हरियाली और आस्था है फिल्म कराम। इसी फिल्म से आप सुन रहे थे लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी की आवाज में लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते ऊपर वाला उनके साथ कभी बुरा भी नहीं होने देते। किशोर ना आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं ये दर्द भरा अफसाना।

किशोर डा की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये दर्द भरा अफसाना, सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। छोटी सी है जिंदगी, खुशी से जियो, गम में क्या रखा है मसे से सर उठा के जियो, उदासी क्या चीज है बस मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी।

सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनाड़ी से हमने पेश किए हैं आशा जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे।

आप सुन रहे थे इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत ही दवा देते हैं। सही ले गई जिया तेरी पहली नजर, एक फूल दुमाली है फिल्म का नाम।

ले गई जिया तेरी पहली नज़र। फ्रॉम द मूवी एक फूल दो माली से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। मोहब्बत भरा पैगाम भेजा है तुझे सुबह का सलाम भेजा है। तेरे कारण मेरे साजन।

तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी आन मिलो सजना से हमने पेश किए हैं। आई मिलन की बेला है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से द टाइटल आप सुनेंगे। आशा जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी आई मिलन की बेला से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन गीत चलाने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज के डूबने के बाद दोबारा सवेरा होता है। हमरे गांव कोई आएगा

हमारे गांव कोई आएगा और मैं ये आप सभी के वास्ते कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपसे दूर जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। पेट्रोल बहुत महंगा है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा।

शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जब मैं सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मजा लें। जिंदगी के सफ़र का मजा लो मित्रों। लीफ मैमसन असिक द मखीफान जोंस ऑफ़ जोंस ऑन हंग जी बसेफिक दट हीन opkomst permanent is en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, our doston, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मेंशन फॉर मी द ग्रोटेस्ट रेकडोम इज wijsheid. Het sterkste wapen is geduld. De beste zekerheid is geloof. En het meest effectieve medicijn is lachen. Lachen, beste mensen. Dus blijf altijd lachen. Hamesa, hasteren, hamesa, hasteren.

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ en die overtuiging leven, beste mensen, en ga zo door. Sathiyon, agar tum peer nahi ban sakte, to jhaadi bano. Agar tum highway nahi ban sakte, to rasta bano. Agar tum suraj nahi ban sakte, to tara bano, tara bano. Kyunki ये तुम्हारे साइंस से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमेंस वेस अन स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन जैन एंड अल्स ये गेन स्नेल वेह कुन जैन वेस दन अन पथ अल्स ये गेन जोन kunt zijn, wees dan een ster, want het is niet door je grootte dat je wint of verliest. Wees de beste in wat je ook bent en doet, lieve mensen.

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिसे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए शरीर, ताकत मिलती है लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन इंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओज जिल ओपनीमन वर्त ओज जिल खजोन वर्त ओज खेस्ट कालम एन स्टेरक वट लेड टू वेल विलेंडहेड इन ओज ओमगेविंग एन वरक्रेग्ट ओज लिखाम इमेंस क्राख्ट वट मूय इज दिट टू Wat is dit toch mooi, lieve mensen. Dus ga zo door, ga zo door. Dosten, hum sabhi mein apne aur dusron ke liye shanti, sukoon ke saath saath stress paida karne ki kshamta hoti hai. Hum sabhi mein problem clear karne ke liye, mitron. Aur ye hamara nazariya hai. जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है. मित्रों ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं. और लिफमेंसन वे आलमाल हैवन एट फरमोकन ओम जो वेल रुस्त स्टिल्ट अल स्ट्रेस द क्रिएरन फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर अंदरन एंड हैट इस ओन हाउडिंग द एन फन बेड ऑन द हाउड एंड फुट. ये हमारे में क्षमता है मित्रों, तो बुराई भी हमरे में और

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूमटाइन है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूमटाइन है। दयालु विचार जड़े हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैन तैनन vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, beste en vriendelijke mensen, wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, तो जिंदगी को दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन, अल्स हैट लीफन यू हंड्रेड रीडनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हाइलन लात हैट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीडनन हैव om te lachen en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो जिंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। मित्रों, आर्दख मैंसन वो माकन है उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तो फ्रीड इन तो विल इन स्टेलन मर है लीफन वो पास एक्ट मकलक उन स्पनन एंड फ्रीड द फॉल आल्सो एयर फॉर किजन om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Doston, samay kabhi hamara intezaar karne ke liye tayar nahi rehta. To phir hum hamesha sahi samay ka intezaar kyun karte hain? Dhyan kariye mitron, hum samay ka intezaar kyun karte rehte hain ki sahi samay aayega? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बतलाया है। फ्रिंदन बेस्टमैनसन द टेट वक्त नोइट ऑफ ओन्स Waarom wachten wij dan altijd op het juiste moment? Er is nooit een verkeerd moment om de juiste dingen te doen. En er is nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na. Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay thik na hai, het is geen goede tijd.
1: Nee.
0: De tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैंसन ईमान फरखीफन इस मकलक मर ईमान वेर कुनन फरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहां मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अनफोर्स प्रों का हाथ ऑपकेनस एरजेन फेल सिटिवासिस वारेन केनस तकोर्ट्स हिट मार खदरख आलस ऑपलोस खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफर का मजा लो, जीवन का सफर का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूत ब्लेफ पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोयो ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है,

जहाँ से हम श्रवण कर रहे हैं भजन माला कार्यक्रम, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपना जीवन, अपना दिन जो है सफल बनाने के लिए। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दिस इज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: Vahon Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए, हर एडवर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक. अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी के हार्दिक से स्वागत है यहाँ से एक बार फिर. ये आपका एनख एख्त फाहन हिंदुस्तानी रेडियो ओवर द हेल वीरल. नए से नए, पुराने से पुराने गीत आपके लिए यहाँ से तैयार करके और आपके कानों तक लाया जाता है. इस वक्त के मेरे दोस्त, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से यही दुआ प्रार्थना है कि हम सब हंसते मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल वैसे मुस्कुराते हुए, बत्तीसी दिखाते हुए ये पल को स्वागत करें. कारण कि आप है तो सब कुछ है, वैसे तो सब कुछ है और रहेगा, हम भी रहेंगे शायद. ये भेषभूषा में नहीं, बल्कि हम पूर्ण जन्म में फिर से वापसी आ जाएंगे. ये प्रकृति जो है बहुत सुंदर है. अब प्रकृति के एक भाग्य हम सब भी है, मनुष्य भी प्रकृति के एक भाग्य है. प्रकृति से

दिन ढल जाए मोहम्मद रफ़ी जी के सुंदर सी आवाज़ में, प्यार भरी आवाज़ में सुना दिए। इस बार है दिन है बहार के फिल्म वक्त से।

ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात, आओ ट्विटर का उठा मौसम।

udah berani.

क्या बात है क्या बात है, रोना तो नहीं चाहते है, बस हंसते हंसते जिंदगी गुजारे मेरे दोस्त, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं आता, ये जिंदगी भी दोबारा नहीं मिलती। फिल्म भूत बंगला से ये गीत आपके

के सिवा कोई और ना मिले, क्या बात है कि दुआ है कि तेरी मोहब्बत के सिवा कोई और ना मिले। जिंदगी में सिर्फ तू मिले, जिंदगी में सिर्फ तू मिले या फिर जिंदगी ना मिले। क्या गहराई है, क्या गहराई है ये शेर शायरी में। एक समाचार यहाँ से आपके लिए, वो ये खुश भरे समाचार ये है कि सितंबर में, सितंबर 2026 तक फ्रांकराइक एन बिसोंदर रिलीजियस एंड कल्चरल मोमेंट वक्तन। और ये क्या है, कौन सी ऐसा है जो इंतज़ार करेगा ए फ्रांकराइक मैंने लिफ मैंस इन बेसी सेंट जॉर्ज इन हेट ओस्तलक रेहियो फ्रॉम पारिस वर्थ द बप्स स्वामी नारायण हिंदू मंदिर ऑफिशियल इन ख्वैत हेट वर्थ फॉल्स बप्स द एर्स्ट ट्रेडिशनल ontworpen speciaal gebouwde hindoe tempel van Frankrijk. De opening wordt gevierd met een groot 13-daagse cultureel festival van 2 tot en met 14 september 2026. Mocht het zijn dat u naar Frankrijk gaat, dan is dit zeker de moeite waard om te gaan bezichtigen. Ja, mijn lieve mensen, hoor ik aan je deze mee. Jo Swami Narayan Mandir is een bada banaya gaya hai aur is baar hai Frankrijk mee. Oostelijke regio van Parijs, daar staat de Babs Swami Narayan Hindu Mandir officieel dat ingewijd zal worden. En het is de eerste ontworpen speciaal gebouwde Hindu tempel van Frankrijk. जिनका जन्मदिन आज है, जो खुशियाँ मना रहे हैं या मनाएगा तैयारियाँ कर रहे, आप सबको बहुत सारे बधाइयाँ पेश किया जाता है। जैसे कि आज हमारा कोलेखा योसेफ का जन्मदिन है। कोलेखा योसेफ, आपको आपके जन्मदिन पे बहुत सारे बधाइयाँ पेश किया जाता है। और कल पर हो तिथि के अनुसार रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन के सभी भाई बहनों को बहुत से शुभकामनाएं भी पेश किया जाता है। मन मोटाई हो भाई बहन में तो उसे दूर करो, गले मिलो। Na blauw alg nu ook poepbacteriën in populaire plas zwemmen afgeraden. Oh jezus, met jaar heet Delfka. Wie in de laatste warme zomerdagen een duik wil nemen, is gewaarschuwd. Ja, zeer gewaarschuwd, let erop. In de Delftse hout geldt sinds kort een dubbele negatieve zwemadvies. Zwemadvies. Eerder werd zwemmen al afgeraden vanwege blauwe alg. Maar nu zijn ook grote hoeveelheden poepbacteriën aangetroffen. Dat leidt tot een grote kans op maag- en darmklachten als mensen toch te water gaan in de grote plas. अपने तंदुरुस्ती के लिए, अपन गेहत के लिए वो काम नहीं करना जो काम में आपको बताया जाता है मिनहाई है तो नहीं करना।

सच में कहा, मैं भी कहती हूँ कि ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, जिंदगी में जैसे भी है बस मुस्कुराकर और आगे बढ़ते रहना। दुख जो आए तो पल में वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए, मुझे हर सुखी हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ, मेरी हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई है कि दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई है, तेरी एक मुस्कुराहट मेरी जाने की वजह, मेरे जीने की जाने तो नहीं बल्कि तुम्हारे पास आने की वजह बन गई है।

क्या बात है, फिल्म गुमराह से यहाँ से आपके लिए स्पेशल स्पेशल सभी लिसनर्स के लिए पेश किया गया है। और इस बार आपके लिए प्लेलिस्ट पर है कि दिल के देखो चेहरा को ना देखो चेहरा अक्सर चेहरा अक्सर धोखा दे जाते हैं, है ना। और कहते हैं कि तेरी बाहों की गर्मी में सारा यहाँ भूल जाते हैं हम, तेरी एक मुस्कान पर हम खुद को हार जाते हैं। लफ्जों में कहाँ लफ्जों में कहो बयां हो पाता है। लफ्जों में कहाँ बयां हो पाता है ये एहसास। हाँ, हम लफ्जों में ये बयां नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते हैं। तुम पास हो तो हर पल प्यार बन जाता है। A lovely moment for everyone.

इनके डांस म्यूजिक मंडोले ये इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए पेश हो रहा है। और ये मत भूलो मेरे दोस्त कि आज 9 बजे विज्ञापन के बाद हर बुधवार की तरह हमारे पूज्य पंडित जी श्री राजकुमार महातम जी उपस्थित रहेगा सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। श्रावण मास भी चल रहा है, आपको बहुत सारी बधाइयाँ भी पेश हो। खास तौर पे जो सोमवार को व्रत रखते हैं, सुना है कि श्रावण मास में सोमवार का व्रत जो है वो बहुत अहम

ये इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको हम यहाँ से सुनाए, देखो तो कहाँ आई, कहाँ चला गया। हाँ, वादा था सुनाने के लिए आपको कि दिल को देखो, चेहरा ना देखो।

वाकई में दिल सच्चा और चेहरा झूठा, फिल्म सच्चा झूठा से आपके लिए यहाँ से पेश किया गया है।

ये दो लाइन आप ज़रूर सुने और इस पे थोड़ा से गौर करें और अपने आसपास में ज़रूर से ख्याल करना कि इंसान जितना अंदर से अकेला होता है उतना ही बाहर से मुस्कुराता है। ये हकीकत है। आप ज़रा अपना इर्द गिर्द में संगठन में बैठना, दोस्तों में बैठना, तो आप थोड़ा से ख्याल करना। ये बात सही है कि इंसान जितना अंदर से अकेला होता है उतना ही बाहर से मुस्कुराता है।

0: दुख कहे दुख, वही फिल्म से निकाल दिया गया है फिल्म सच्चा झूठा। किशोरदास जी की आवाज में, किशोरदास जी की आवाज में कितना गर्मी है, कितना प्यार है, कितना एहसास है, वाओ। ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चार कदम साथ चले थे, हाँ सात कदम साथ चले थे, आँख खोली तो ख्वाब था। हाँ ये ख्वाब जो हम देखते हैं ना बैठ के आँख मूंद कर सो कर, कभी कभी हम जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं। तो जो आप ख्वाब देखते हैं ना मेरे दोस्त, तो कोशिश करना कि इसके हकीकत बना लेना। हाँ जो पॉजिटिव ख्वाब है ना, दैट यू ऑली पॉजिटिव ख्वाब व्हाट यू थिंक दैट दी मार इन फरफेलिंग कॉम। तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तू पास हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। तो सोचो आप कितना अहम है, आप में कितना, आप कितने पलंग रखे। तीन मिनट बाकी है 9 बजने में। यहाँ से आपके लिए विज्ञापन तैयार करके रखी हूँ, और विज्ञापन के बाद जैसे मैंने कही है तो हर बुधवार की तरह श्री पंडित राजकुमार महात्म जी उपस्थित रहेगा हम सभी को सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपके लिए यहाँ से पेश है विज्ञापन।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763527 247 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar.
6: Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts één tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocaten.
0: Je hebt er komende zonne wegjapen, mijn lieve mensen. और 9:02 गुजर गया है आज बुधवार के सुबह की कार्यक्रम सेशन 26 अगस्त हो चला है हां आठवां महीना इस साल का धीरे-धीरे भी पूरा हो रहा है हां आठवां महीना के बाद नौवां महीना चला जाएगा नेक्स्ट इन द मंथ सितंबर तो दिनस्ताख से शुरुआत होएगी पर दिनस्ताख अबे काफी दूर है यहां से हम आज में जीले सेशन 20 तक अगस्त को हम जीले

0: जिनका इंतज़ार था वो आ गया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ पर बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महातम जी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है। पंडित जी, आपको दिल से नमस्कार किया जाता है और आप आकाश में हैं, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद। हरि ओम महादेवम्। नारायण परम ब्रह्मा, नारायण परम तपाम, नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम। ओम नीलं भुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित्वाम भागम पाडु महासायिक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हरि ओम नमः संभवाय च महाविभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च सीतराय च मुक्षुक स्वरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे, आप सभी को जाकर यथा युग मेरा प्रणाम नमस्कार। यह राम राम सीताराम पहुंचे। खास रेडियो फान को जो मालिक है, मैं उनके भूरी भी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया है धर प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे, हर बुद्ध की तरह आज संता जी भी कितने अच्छे ढंग से हमें सेवा कर रहे थे रेडियो फाउन के माध्यम से, मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, हर बुद्ध की तरह आज भी मैं आपसे बीच में उपस्थित हूँ, इस पे थोड़ा ध्यान करना। मिलो तो फूल की तरह, बिखर तो सुगंध की तरह, न जाने कौन समय जीवन की यात्रा में आ जाएगा, अजन हम आपका ही बंधन से बिखर जाएगा। कल जो है कल कोई नहीं देखा। कहने का तात ये है, जो कल ही करना है आज करो, जो आज करना है इस वक्त, लेकिन अच्छा कार्य। कुछ बुरा ख्याल जो आए ना तो के कल के लिए छोड़ो, तो कल ना आएगा तो हम भूल जाएंगे। यही संसार है, यही संसार है। आकाशवाणी के सुनने वालों, कहो घुघरू मचलती है, कहो आंसू निकलती है, सभी काम निकलते, इसी का नाम दुनिया या संसार हम बोलते। कहने के तात आज कितने परिवार मृत्यु प्रवेश किए, वहां पर लोग दुख में हैं, आंसू बहाते हैं। कितने परिवार में जहां पर आज जन्म गांठ है वहां पर लोग जन्म गांठ मनाते हैं, नाचते हैं, जन्म गांठ मनाते हैं। कहने के तात यही संसार दुख सुख दोनों हमारे साथ में है। यही बात जाकर के भोलेनाथ शंकर बाबा ने गौरा पार्वती माँ से कहे थे ना, जिस समय गौरा पार्वती माँ के पिता घर पर यज्ञ था, तो वहां पर गौरा पार्वती माँ कहे भोलेनाथ शंकर बाबा से, पिता घर पर यज्ञ है, तो भोलेनाथ शंकर बाबा ने कहा, हे प्रिय ये संसार है, कहो पर दुख है, कहो पर सुख है, कहो पर विवाह संस्कार है, कहो पर यज्ञ है, यही संसार है। आकाशवाणी के सुनने वालों, तो फूल जो है, जो फूल खिलते हैं वो फूल के पता नहीं है कि फूल जाकर के भगवान के चरण अर्पण होगा, कि वही फूल जाकर के जहाँ अंत्येष्ट क्रियाओं पर प्रयोग किया जाएगा। चलो माँ के बारे में विचार किया जाए। आकाशवाणी के सुनने वालों, माँ ही हमें चलना और बात करना सिखाती है। सरलता में सहज में मैं कह रहा, आकाशवाणी के सुनने वालों, सरलता से पचाने वाले भोजन से आरंभ कर वो हमें भोजन करना भी सिखाती है माँ। वो क्या करते हैं, पिताजी आदि शब्दों में आरंभ कर वार्तालाप भी सिखाती है और अपने इस संसारिक माता की महानता को देखकर संत वे मंत्र ने कहा था कि ऐसे संतानों से क्या लाभ जो स्वयं अपने ही माता पिता से प्रेम करना नहीं जानते। समय समय पर कितने ही धीमक पैदा होती है और नष्ट होती है। ऐसा संतान मात्र दीमक के समान है। हमें अपने माता पिता को गौरी पार्वती और शंकर समझना चाहिए। यदि हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते तो फिर भला संसार में हमें किसे प्रसन्न कर सकेगा। कनेक्टा आकाशवाणी के सुनने वालों, जब तक हम आप अपने माँ पिता के आशीर्वाद ना पाएंगे तो जगदीश्वर के आशीर्वाद कैसे मिलेगा। आकाशवाणी के सुनने वालों, हमें अपने दैनिक जीवन में सत्य को सहारा लेना पड़ता है। जब हम ईश्वर को ज्ञान और शक्ति का अवतार मानने लगते हैं ना, तो हमें उसे प्राप्त करने की शक्ति और ज्ञान भी प्राप्त होने लगता है। माँ और बालक के प्रेम में संबंध होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार जब हम दो पदार्थ या दो लकड़ी हम रगड़ते तो उसमें ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अग्नि उत्पन्न होती है। माता और पुत्र के स्नेह से प्रेम ज्योति उत्पन्न होती है। रामायण में इसका एक सुंदर दृष्टांत है। सीता वाल्मीकि आश्रम में अपने जीवन व्यतीत कर रही थी। वहां से निरंतर श्री राम के ध्यान में मगन रहती थी। उनके दो पुत्र लव और कुश, हमेशा हम सुनते हैं कि उनके दो पुत्र लव और कुश, तो इस पे ध्यान करना का आकाशवाणी के सुनने वालों, कुश के उत्पन्न कहाँ से हुआ? आप कहें सीता माँ से, ऐसा बात नहीं। मैया सीता मन लव को उत्पन्न किया और कुश जो रहा, तो वाल्मीकि ने विचार किया लव है, इनके भी कोई होना चाहिए खेलने के लिए। तो वहां पर जा करके वाल्मीकि ने, तत्वत रामायण लिखा है, वाल्मीकि ने 60,000 बरिस तब जो किए थे अपने शक्ति से कुश के घास लेकर उत्पन्न किया के नहीं कुश को। तो लव और कुश दो भाई है ना, जो आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे अपनी माता के असीम प्रेम की सुनहरी धूप में निरंतर आवागमन करते थे। वे जो कुछ आश्रम में सीखते थे अपनी माता के सन्मुख उसे अपने माता से जाकर उससे वार्तालाप करते थे। सीता स्वयं उन्हें अनेक बातों सिखाती थी। इन बालकों में अपनी माता के प्रति इतना प्रेम था कि एक बार उन्होंने श्री राम से युद्ध कर उन्हें आश्रम से लौटना पर विश्वास किया। माँ के प्रति अटूट और पवित्र भक्ति संतान में इतनी शक्ति उत्पन्न कर देती है कि वह एक बार स्वयं भगवान को भी चुनौती दे सकता है। माँ के प्रेम और माता के प्रति प्रेम की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। आकाशवाणी के सुन वाली बात आप भी जानते हैं ना, हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमारे शरीर में जो शक्ति विराजमान है वो दुर्गा ही स्वरूप है। अतः हमें अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। अपनी बुरी दृष्टि तथा कुटिल अप्रिय वाणी से भी लोग अपनी शक्ति का वहां पर व्यतीत करते हैं, ये निंदनीय है। हमें चाहिए कि हम इन्हें मधुर तथा पवित्र वाणी तथा कार्य में परिवर्तित करें। दो ही प्रकार के वाणी है, एक कर्कश वाणी और एक मधुर वाणी हमारे इस रूप में समारोह मानना कि इसमें हमें ध्यान करना का स्वानिक हमारे इस ही ये है कि हम शक्ति की महत्व को समझे और उसे छिछोड़ से नष्ट ना होने दे। इस समारोह का ये पक्ष महत्वपूर्ण है, हमें ये प्रदर्शन, हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, ओ माँ आप हमारे हृदय में शक्ति के रूप में भी निवास करती हैं, कृपा कर आप मेरे अंग पर्यंग में प्रभावित हो, मुझे उत्तम कार्य के लिए प्रेरणा दे। माँ जो भोजन हम आप करते हैं वो तो लक्ष्मी का स्वरूप है, हमें उसका एक कण भी नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल भी बराबर ना करना चाहिए। सृष्टि के पांच तत्व में लक्ष्मी के ही स्वरूप है, भक्ति भले ही वेद वेदांग का पंडित हो, इस पे ध्यान करना, व्यक्ति भले ही वेद वेदांग के वेदों के पंडित हो और कल्प रचना में निपुण हो और उसकी गति हो, किंतु वो उसका हृदय पवित्र नहीं है तो उसका जीवन ही व्यर्थ है, शिक्षा से व्यवहार से वंचित है, शिक्षा नहीं कहलाती। तुमने जो कुछ भी सीखा है उसे व्यवहार में लाओ और उसका प्रयोग करो। तो हमारे ऋषियों ने मुनि ने को भगवान से प्रार्थना प्राप्त, भगवान से दर्शन प्राप्त होने के रहस्य ही कहा था कि वे अपने शक्ति के सन्मुख प्रयोग करने में समर्थ थे। उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि वे अज्ञान से परे हैं, को देख कर सकते हैं। हम भी जब अपने अज्ञान की सीमा को पार कर सकेंगे तभी हम अपनी तपस्या का फल प्राप्त होगा। हमें स्वयं को अपने अहं को अधिकार भगवान से मुक्त करना का प्रयास करना चाहिए। आकाशवाणी के सुनने वालों ज्यादा न कहते हुए वाणी द्वारा अपना परिचय विराम कर

जितनी देर पंडित जी कथा सुना रहे थे उतनी देर में नाश्ता कर ली ये भी ज़रूरी है। और पंडित को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है जो अपना मूल्य वक्त निकाल कर रेडियो पे आकर अपना सुंदर सा कथा हम सबको सुनाता है, आज भी सुनाई है। और यही दुआ प्रार्थना है, यही प्रार्थना है प्रभु परमात्मा से कि पंडित जी का तंदुरुस्ती हरदम बना रहे और हर बुधवार की तरह आकर और हमारा सेवा करे, सुंदर सुंदर कथा से ज़रूर है। तो पंडित जी को आप, पंडित जी आपको हार्दिक से धन्यवाद है आने के लिए, आपको भी एक शुभ दिन। आठ दिन ओवर नहीं हो चला है और यहाँ से हम अपना कोलेगा योसेफ को भी बधाइयाँ दे रही हूँ। मुझे पता है योसेफ जी रेडियो के करीब है, तो बहुत सा प्यार आपको मिले योसेफ जी और साथ ही साथ उनकी मशू का जो है ना साया की तरह ये दोनों साथ चलते हैं। जीवन ऐसा ही होना चाहिए, पति पत्नी एक दूसरे के सहारा साया बनकर और कदम से कदम बढ़ते चलने चाहिए।

0: गीत यहाँ से है इंस्ट्रूमेंटल, थोड़े से रोक रही हूँ, और यहाँ से आपके लिए एक खूबसूरत गीत सुंदर आवाज में। और फिल्म का नाम यहाँ से हम आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम है ऊंचे लोग, और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है 1965 में, हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में फिरोज़ खान ये गीत को प्लेबैक की है। तो सुनेंगे हम कि जाग ऐ दिले दीवाना।
1: Mm-hmm.

वेरी रोमांटिक गीत है, अल्फाज है इनमें और इनकी धुन जो है कितनी रोमांटिक से ये गीत, रोमांस वाला गीत और रोमांटिक मूड में ये भी हमको सुना दी है। और ये कौन था? हाँ, मोहम्मद रफ़ी जी के सिवा और कौन हो सकता है। समय से भी महंगी भावनाएं होती है मेरे दोस्त, कि समय से भी महंगी भावनाएं होती है, जो समझो उसी पर खर्च ज़रूर से करना। जो आपको समझे, आपके भावनाओं को समझे, उसी पर अपना जीवन जो है, जो पल है, जो खुशियां है, उसी पर खर्च करो। कहते हैं कि ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरी नसीब में हो, हाँ ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वह चाहे जैसा भी हो, बस तुम मेरे करीब रहो। और इस बार थे फिल्म जूली से माय हार्ट इज बीटिंग। धड़कता है माय हार्ट

वाओ, कितना सुंदर, कितना प्यार भरे गीत, तुम तो प्यार हो। कितने मिठास है ये सब गीतों में और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो इसमें सब रचाई गई है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन मिलता है, देखते हैं पहले कौन मिलता है, हमें दोनों का इंतजार है। जीवन साथी कब मिले ये पता नहीं और मौत कब आए ये भी पता नहीं। तो मैं कहती हूँ कि मौत का इंतजार मत करो, वो तो हर पल पे आ जाएगा। बात यह है कि अपना जीवन जो है उसे खुल कर जियो।

0: मेरे दोस्तों, भाई बहनों, हमने अभी बताई है प्रोग्राम में कि आज हमारा कोलेगा योसेफ जो अपना जो अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं आज, और इसी उपलक्ष पर हमारा कोलेगा राजन भी उपस्थित हो गया है स्टूडियो में। तो आज 10 बजे के बाद हम सुनेंगे योसेफ जी का फरमाइश, जो हमारा कोलेगा राजन उनके लिए पढ़ेगा, फरमाएगा। और क्या वो तैयारी करके लाए है ये मुझे भी पता नहीं है। दिस लातिफरास एंड फराल ओंस यारह योसेफ, ओंस यारह योसेफ जी एंड सेन वीदर हेल्फ माशुका सिला जी। हाँ हाँ, यारह है हमारे सामा हमारे बीच में, और कल रक्षाबंधन है और श्रावण मास भी चल रहा है। हाँ, तिथि के अनुसार कैलेंडर के अनुसार और गूगल के अनुसार कहता है कोई 27 तक के या 28 तक के। ये मैं कहती हूँ कि बस भाई बहन का प्यार हमेशा रहना चाहिए और दिल से रहना चाहिए। रक्षाबंधन के उपलक्ष पर आपके लिए, हम बहनों के लिए,
1: ये सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
0: सुंदर सा रक्षाबंधन गीत आपके लिए एडवांस में फाओ हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से।

मेरे प्यार सुनने वालों, बहुत सुंदर से फरमा दी है कि हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, सभी के लिए कोई ना कोई त्यौहार बनाया गया है। फादर डाख, मदर डाख, केंद्र डाख, रक्षाबंधन भी एक ऐसा त्यौहार है। भाई बहन का प्यार जो भाई बहन के जो साथ में लाते हैं। मैं कहती हूँ, अगर आपका भाई है, बहन है, तो आपका मन मोटाव जितना भी हो, ये दिन आप ज़रूर से साथ में हो लेना और यहाँ से जो मन मोटाव है वो सब दूर कर देना। कि जीवन बहुत अनमोल है, पूछो उन भाइयों से, उन बहनों से जिनके भाई नहीं है, जिनके बहन नहीं है, कितने तड़प उठते हैं वो आज का दिन। तो जो आपके हो, आपके भाई हो, तो इस पे आप गौर करना और गरूर करना। आशा भोसले जी की आवाज़ में मेरे भैया।

मेरे भैया, अभी मैं अपने कलीगा राजन से बात कर रहे रही थी और रही हूँ। बात यह है कि रक्षाबंधन के बारे में और सभी कार्य के बारे में हम बात कर रहे थे। ये सब कार्य जो है, ये सब संस्कार जो है, हमें बाहर से जैसे कि रेडियो से भी मिलता है सुनने के लिए, सुधार लाने के लिए, बल्कि अहम बात यह है कि वो सब हमें घर में सिखाना पड़ता है। घर से शुरुआत होता है। अगर घर में हम नहीं दिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, तो हम भी नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ से आपके लिए एक देखिए तो 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है 10 बजने में, एक स्पेशल गीत आपके लिए।

आप सोचेंगे ये गीत मैं कैसे चला रही हूँ, मेरी प्यारी बहन या दुल्हन या बनेगी। हाँ हाँ, पर गीत को ज़रूर से सुनते रहना। भाई की भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई बहन जहाँ भी हो ज़रूर से आना रक्षाबंधन के

हाँ, तो गीत में आप सुन ले कि और ये गीत ख़ास तौर पे गुजारिश पे एक बार फिर आपके लिए चलाया जाता है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर। इस गीत के बाद हमें विज्ञापन लगा दूंगी और विज्ञापन के बाद हमारा कोलेखा राजन यहाँ उपस्थित जो है वह यहाँ से आपके सेवा करेगा यूसुफ जी का फरमाइश से, और आगे कार्यक्रम उससे ज़रूर से सुनना। मेरे साथ देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। हम आपसे फिर मिलेंगे। दुआ प्रार्थना में ज़रूर से याद करना मेरी को।

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फरहूर बेड्रेव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-9339. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf A.

Glasgow Cool op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia

0: सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार आदाबर। सो घर की ओर देखता हूं तो 10:03 बीत गया है। फा होने शायरी पर आप चुन है। बुधवार है अगस्त की 26 तारीख वुजदाग 26 अगस्तस। जन परिवार घर में दुख है दुख में हम साथ देते हैं। जहां पर खुशियां है बहुत से बधाई पेश हो। अभी शांता जी के सरी आपने प्रोग्राम सुना दोस्तों, जोर तोर से प्रोग्राम पेश किया। मैंने शांता से कहा एक बार कि शांता तू आशा भोसले गाना गाओ। मैं शांता ज्यादा से ज्यादा लतक गाना गावे है, हो सकता शायद कोशिश करी। अब खास बात यह है दोस्तों, आज मैं स्टूडियो में पहुंचा इसलिए कि हमारा अनुसर साथी भी है और हमारा फाहन इंसान का मददगार हमारा साथी श्रीमान योसेफ सातू का आज जन्मदिन है। 75 फैफन तक बरस के आदमी हो गया है। साहेब यूसेफ अपन मसूका के साथ इस वक्त छुट्टी पे है, जोर तोर से छुट्टी मना रहा है और खड़े होटल के कामर में बैठे हुए इस वक्त प्रोग्राम से मजा लूट रहा है। यूसेफ नोकमास फहार्त खफिलसित नामद टीम फन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और शीला आपको भी बहुत से बधाई पेश हो। छत्तर साल दोस्तों तखन मुझे लीफ दे 100 अपनार हौंदत यूसेफ साहेब और इस खुशी प्लस पर फाहन के फुल टीम फाहन का डायरेक्टर और जितना लीडर है सभी की तरफ से यूसेफ के लिए बड़े प्यार और मोहब्बत से भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि यूसेफ के लंबी उम्र मिले। ये सॉन्ग पेश है।
1: Happy birthday to you।
0: शीला यूसेफ के हाथ पकड़ लिए, खड़ा हो जाइए।

ए बिगी यारी यूसुफ साहेब का आज जन्मदिन है, 75 साल के हो गया है। फाहून के फुल टीम की ओर से साथी यूसुफ को बहुत से बधाई पेश किया गया। तुमको हमारी उम्र लग जाए ये दुआ करते हैं सीला मसूका सीला यूसुफ के लिए जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये गीत।

0: यूसुफ साहब, यूसुफ का मासूका सीला के ओर से, यूसुफ के वास्ते आज जन्मदिन है। 75 साल के हो गए साहब यूसुफ, और बड़ी खुशी के साथ ये गीत को मांग किए। आकाश पे दो तारे, लेकिन जमी पे भी दो तारे हैं दोस्तों, न सिर्फ आकाश पर। वो है साहब यूसुफ और उनका जीवन साथी सीला। जन्मदिन के खास उपलक्ष्य पर एक दूजे के लिए ये सॉन्ग।
1: Happy birthday!

0: यूसेफ का 75वां साल के खास उपलस पर मसुका सीला यूसेफ के वास्ते सीला की ओर से और यूसेफ की ओर से सीला के लिए बड़े प्यार के साथ ये सॉन्ग पेश था। अब की बार दोस्तों न सिर्फ 25 न 50 लेकिन 75 साल के आदमी हो गया है और छुट्टियां मना रहा है अपन जीवन साथी अब मसुका सीला के साथ। दूर गगन पर चमके सितारे, वाह क्या बात है, एक दूजे के लिए फिर ये सॉन्ग पेश है सीला की तरफ से यूसेफ और यूसेफ की ओर से सीला के वास्ते बड़े प्यार और दुलार के साथ।
1: कितनी सुंदर है रात, जी चाहता है रात सदा यूं ही रहे, कभी सवेरा ही ना हो।

लीपन बेरख के रहने वाला श्रीमान यूसुफ साहेब यूसुफ सेतु का आज 75वां जन्मदिन है और अपन मसुका आसीला के साथ छुट्टी मना रहा है दोस्तों सुसैन फकांसी। और मैं सोचता हूँ होटल के लॉन्च पे दोनों बैठे हुए प्रोग्राम से मजा लूट रहे हैं, फिर एक बार सिला की तरफ से यूसुफ और यूसुफ साहेब यूसुफ की ओर से प्यारी प्यारी मासुका सिला के लिए जन्मदिन के खास प्लस पर ये सॉन्ग पेश है।

क्या क्या किया जादू डाला कि दोनों का दिल मतवाला हो गया, साहेब यूसुफ और जीवन साथी सिला दोनों का दिल मतवाला हो गया। खास बात यह है दोस्तों, यूसुफ का आज 75वां जन्मदिन है और एक दूसरे के लिए ये सॉन्ग पेश किया। साल में सिर्फ एक बार आता है, वो है जन्मदिन। और दोस्तों यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि सीला बहुत खुश हुए आज, इसलिए कि उनका जीवन साथी जो है 75 साल के हो गया। फेफन सीफन तक रोंत खताल है दोस्तों, और छुट्टियां मना रहे। मैं जैसे कहा, सोचता हूँ कि ये दोनों होटल के लॉन्च पर बैठे हुए प्रोग्राम से मजा लूट रहे होंगे। तो एक दूसरे के लिए एक बार फिर याद रहेगा प्यार का ये रंगीन जमाना, खास 75 साल के उपलक्ष्य पर एक दूसरे के लिए सॉन्ग स्पेशल पेश है।

साहब यूसुफ के जर्मनी के खास प्लस पर सीला की तरफ से यूसुफ और यूसुफ की ओर से सीला के वास्ते ये गीत पेश था। आज जब अगस्त के 26 तारीख है, सेशन 20 अगस्त से दोस्तों, तो हमारा साथी सीमान या साहेब यूसुफ सेतु का जन्मदिन है। जन्मदिन के खास प्लस पर जीवन साथी या मासुका सीला के ओर से साहेब यूसुफ को बहुत से बधाई देते हैं ये सॉन्ग के साथ।

चेहरे के बात छोड़ो, आंखें के चोर देखो, सिला बहुत खुश है इसलिए कि जीवन साथी साहब यूसुफ का 75वां जन्मदिन है। और सिला खास करके यूसुफ के लिए मांग के आपकी बार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। यूसुफ का आज 75वां जन्मदिन है और 75वां जन्म के उपलक्ष्य पर जीवन साथी सिला के ओर से यूसुफ के लिए बड़े दुलार के साथ ये सॉन्ग।

हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर यूसेफ। जब आज 26 तारीख अगस्त के तो साहब यूसेफ सेतु का 75वां जन्मदिन है और खास उपलक्ष पर जीवन साथी शीला की ओर से यूसेफ के लिए ये सॉन्ग पेश था। एक दूसरा को गीत की ओर हम जाते हैं, मुझे प्यार के जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, यूसेफ के तरफ से सीता के लिए, शीला के लिए, और शीला की ओर से यूसेफ के वास्ते एक दूजे के लिए बड़े प्यार और दुलार के साथ।

बोले सही बात है, जब प्यार के जिंदगी दिया तो गम मत देना खुशी देने वाले साहब यूसुफ की तरफ से शिला के लिए, शिला के ओर से यूसुफ के वास्ते, जिनके खास ब्रस पर ये सॉन्ग पेस्ट किया गया। एक आखिरी फरियारी गीत चलेगा यूसुफ का, वो है फाहुन का फुल टीम, डायरेक्सी और टीम जितना लोगों है यहाँ फाहुन का काम करते हैं, ये सभी के तरफ से साहेब यूसुफ के लिए। बात यह है कि आज जब 26 तारीख है अगस्त के, तो उनका 75वां जन्मदिन है। और यूसुफ आपका फुल टीम जो है, जितना फाहुन का, ये सभी बड़े खुश भी है आपके तरह, शिला के तरह भी। तो हम सब खुश होकर आपके लिए ये सॉन्ग पेश करता हूँ।

साहन हुसैन रे बरात चुन है और यहाँ सारे में होता है क्या हो तेरे और दर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम प्यार करे मुझसे प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

क्या हुआ तेरे वादा दरबर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरे और दर भर गीत ब्रुकन हाथ सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहन हिंसाइन पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 फिर से आपको तार करना है

तारों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नति यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्णा कुमार कुन्नति मिस्टर के पैदा हुआ दीरेंद्र तक ऑक्सीस्तक इंडिया का प्लेबैक सिंगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है तमारा। मलेशिया से ऑर्डर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना के ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था निकटक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु के तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना उसके चेहरे पर मत आना उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

रिकॉर्डिंग सेशन निघटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाया सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद आँख में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाया, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तनहा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2004 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 23 साल के उम्र में मई 2002 के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

पहाड़ों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों, फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने ने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यारह फैफन शैस्तक, सेशन शैस्तक, सीफन शैस्तक, आख्तन शैस्तक, तो निगरी सीफन तक जब ले खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरज जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप ट्यून है

अभी का हैप्पी स्टेशन फॉर होन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दिल मेरी ना सुने, कैसा दिल है ये दोस्तों।

ये कैसी बात है, जब दिल मेरा नहीं सुनता तो मैं दिल को क्या करूं। कभी कभी हो जाता है कि दिल बस में नहीं रहता है। दोस्तों, रब मिल गया फिल्म का सॉन्ग है, मोहम्मद इरफान।

हम अकेले इसलिए रहते हैं, हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं।

दिल सच्चा और चेहरा झूठा दोस्तों, ये तो एक फिल्म था ना, और आप जानते हैं हकीकत में कभी कभी चेहरा अच्छा होता है, दिल झूठा होता है। फिर भी ये फिल्म सच्चा झूठा जो है, ये फिल्म मनमोहन देसाई ने तैयार किया, जब तो शशि कपूर को लिया इस फिल्म में काम करने को, लेकिन शशि कपूर ने पूछा मेरा साथ किसने मेरे साथ एक फिल्म में काम करेगा, तो महेंद्र देसाई ने कहा मुमताज आपके साथ इस फिल्म में काम करेगा, तो शशि कपूर ने कहा नहीं नहीं दूसरे एक्ट्रेस को ले लेना तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा। तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कहा देखो शशि साहब, मैं दूसर डायरेक्टर बदल सकता हूँ, प्रोड्यूसर बदल सकता हूँ, गायक बदल सकता हूँ, मगर मैं मुमताज़ को नहीं बदलूँगा। तो जाकर राजेश खन्ना को लिया इस फिल्म में काम करने को दोस्तों, और राजेश खन्ना और मुमताज़ इस फिल्म बनाया और ये फिल्म एक हिट हुआ, एक जुबली हिट हुआ। तो शशि कपूर जब देखा कि ये फिल्म एक जुबली हिट हुआ तो शर्मिंदा हो गया और आगे चलकर फिर शशि कपूर मुमताज़ के साथ काम किया। इसी फिल्म का एक सॉन्ग सच्चा झूठा।

जीएस खन्ना और मुमताज का हिट फिल्म सच्चा झूठा का सॉन्ग अभी आपने किशोरदा की आवाज़ में सुना। हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से, 0 से 5 3 2 8 फिर सीफ पर आपको तार करना है।

लंबा लंबा गोरा गोरा अक्षय कुमार है दोस्तों, फिल्म रुस्तम का सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया, अतीफ असलम और साथियों की आवाज़ में भी आपने सुना फाह हिंदुस्तान रेडियो का प्रोग्राम, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है दोस्तों राजन के साथ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे झूठा ही सही, क्या बात है दोस्तों, वो भी सही बात है, चाहे झूठे झूठे फिर भी प्यार कीजिए। फिल्म जॉनी मेरा नाम का सॉन्ग है जिसमें देवानंद हेमा मालिनी काम किया दोस्तों। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जब बना तो उस फिल्म में देवा और हेमा मालिनी भी था। इस फिल्म के बाद इन दोनों में प्यार हो गया, इन दोनों में प्यार हो गया और ताजमहल होटल में ये दोनों बैठ कर कुछ खा पी रहा था, तो वहाँ पर जाकर राज कपूर पहुँचा दोस्तों। राज कपूर थोड़ा से शराब पिया था और हेमा मालिनी के गाल छूने लगा वगैरह वगैरह, तो देवानंद गुस्से में आकर और हेमा को वहाँ पर छोड़कर और चला गया। ये भी होता रहता है।

शहर छुटा ही सही फिर भी प्यार कीजिए, जिसका मुझे था इंतजार, फिल्म दोन का सॉन्ग है जिसमें अमिताभ और सिन्नत अमन ने काम किया। दोस्तों फिल्म जिंदगी जिंदगी अपने पहले फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने के बाद 12 लाख कर्ज में डूबे हुए प्रोड्यूसर निर्मल ईरानी को सिन्नत अमन और अमिताभ बच्चन और चंद्र भारत ये सभी ने एक नई फिल्म बनाने को साथ देने का मौका दिया। और कहानी इस फिल्म में कोई पैसा नहीं लेंगे, तो ये तीनों ने कहा कि ये कोई पैसा नहीं लेंगे अगर ईरानी जी एक नई फिल्म तैयार करेगा। अपने दोस्तों के सलाह पे निर्मल जी ने फिल्म बनाने के तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन ये दोनों ने कहा कि फिल्म में हम लोग काम करेंगे और एक चीज पैसा नहीं लेंगे। तो उसी समय में सालिम और जीवत ये दोनों के पास एक कहानी था, एक फिल्म था जिसने खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो ये कहानी कुछ दूसरा कहानी नहीं था, ये था हिट फिल्म डॉन। तो ये फिल्म ईरानी जी ने ले लिया और ये फिल्म जोरदार से चला दोस्तों। उसी साल का तीसरा हिट फिल्म निकला। ये फिल्म दोन जो था ये उस साल का तीसरी हिट फिल्म मिला और ये फिल्म 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाई थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रोड्यूसर कितना खुश होगा उस समय पर अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन दोनों के ऊपर। तो इसी तरह से ये फिल्म का गीत जो मैं पेश करता हूँ, इस फिल्म तैयार हुआ है।

आज रपट जाई हो तो हमें ना उठाई हो। एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी निकती तीन ताकतक में से निकालें फिल्म नमक हलाल में ये शानदार गीत बप्पी लहरी के साज पर। आप चुने फावन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो लीजिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत इस तरह से। मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

मैती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी दोनों मिलके आपको सुनाएं, याद रहेगा। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत है। जो लोग चुनकी मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए, क्या ख्याल है? जी हाँ, क्या ख्याल है लता जी? और सुनिए ये ख़त के सिलसिला लता जी की मुखारविंद से। चलिए लता जी आपको सुनाते हैं ख़त में उन्होंने क्या लिखा, क्या जवाब पाया, गया या नहीं गया, पोस्ट ऑर्डर ने भेजा या नहीं भेजा। चलिए लता जी आपको सुनाएंगे।

ने सनम को ख़त लिखा, और ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि ख़त तो भेजा गया लेकिन ख़त फिर वापस आ गया। ख़त का पता तो लिखा था लेकिन वो पता कहीं नहीं मिला। तो जाहिर है कि ये प्रेमी प्रेमिका की गीत होगी। शुभकामना के साथ चलिए हमने एक गीत चलाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत है, बस सुन लीजिए, इस तरह से है।

लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकालने, शकील बदायूं उन्हीं की लिखी हुई गीत, और हम आपको सुनाएं फिल्म आदमी में से निकाल कर। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, चलिए कुछ बदलाव लाते हैं इस तरह से।

लता जी और किशोर कुमार जी फिल्म रॉकी में से निकाले हैं आर डी बर्मन के साथ पर और पेश किया गया है ये कार्यक्रम में। चलिए क्या ख्याल है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, मौसम के देखते हुए चलिए ये गीत।

0: तमो
1: लता जी और महेंद्र कपूर जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, इस तरह से हमने पेश की फिल्म धूल का फूल में से निकाल कर। जहाँ तक मेरा ख्याल है धूल का फूल बहुत लोगों ने देखे होंगे, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। सूत्रमेर से मीला जी आपका हृदय से स्वागत भी है, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये

0: रफ़ी साहेब बादशाह जी की ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शंकर जय किशन के साज पर फिल्म शतरंज में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये है माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस,
1: तूने जब जब
0: फिल्म उपासना में से।

मैं भी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दर्पण को देखा, फिल्म उपासना में से निकाले हैं और ये शानदार गीत हमने चलाए हैं। एवरग्रीन किशोर कुमार का क्या ख्याल है? प्यारी गीत

किसी एवरग्रीन किशोर कुमार मेरी भीगी भीगी से बहुत प्यारी नंबर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। उम्मीद है गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम आपको एक गीत और सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

फिल्म शागिर्द, जी हाँ, फिल्म शागिर्द में से निकाले हैं और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर फिल्म शागिर्द निगेटिव सेवन सेस का है। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए यहाँ से हम चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं क्या ख्याल है, अगर आपको ये गीत सुनाऊं इस तरह से आ रहा है।

आज रपट जाइ हो तो हमें ना उठाइयो। एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी निकती तीन तख्त में से निकाले फिल्म नमक हलाल में ये शानदार गीत बप्पी लहरी के साज पर। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो लीजिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत इस तरह से। मुकेश दहा टॉप ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी दोनों मिलके आपको सुनाए, याद रहेगा। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत है। जो लोग चुनके मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए, आपका स्वागत करते हुए क्या ख्याल है? जी हाँ, क्या ख्याल है लता जी? और सुनिए ये ख़त के सिलसिला लता जी की मुखारविंद से। चलिए लता जी आपको सुनाते हैं ख़त में उन्होंने क्या लिखा, क्या जवाब पाया, गया या नहीं गया, पोस्ट ऑर्डर ने भेजा या नहीं भेजा। चलिए लता जी आपको सुनाएंगे।

ने सनम को ख़त लिखा, और ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि ख़त तो भेजा गया लेकिन ख़त फिर वापस आ गया। ख़त का पता तो लिखा था लेकिन वो पता कहीं नहीं मिला। तो जाहिर है कि प्रेमी प्रेमिका की गीत होगी। शुभकामना के साथ चलिए हमने एक गीत चलाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत है, बस सुन लीजिए, इस तरह से है।

लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकालने शकील बदायूं उन्हीं की लिखी हुई गीत और हम आपको सुनाएं फिल्म आदमी में से निकाल कर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर चलिए कुछ बदलाव लाते हैं इस तरह से।

लता जी और किशोर कुमार जी फिल्म रॉकी में से निकाले हैं आरडी बर्मन के साथ पर और पेश किया गया है ये कार्यक्रम में। चलिए क्या ख्याल है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, मौसम के देखते हुए चलिए ये गीत।

0: प्रमो
1: लता जी और महेंद्र कपूर जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, इस तरह से हमने पेश की फिल्म धूल का फूल में से निकाल कर। जहाँ तक मेरा ख्याल है धूल का फूल बहुत लोगों ने देखे होंगे, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। सूत्रमेर से मीला जी आपका हृदय से स्वागत भी है, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये

0: रफ़ी साहेब बादशाह जी की ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शंकर जय किशन के साथ पर फिल्म शतरंज में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये है माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: तुमने जब जब
0: फिल्म उपासना में से

मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दर्पण को देखा, फिल्म उपासना में से निकाले हैं और ये शानदार गीत हमने चलाए हैं। एवरग्रीन किशोर कुमार का क्या ख्याल है, प्यारी गीत।

0: एवरग्रीन किशोर कुमार मेरी बीगी बीगी से बहुत प्यारी नंबर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। उम्मीद है गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम आपको एक गीत और सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।
1: अच्छा,

फिल्म शागिर्द, जी हाँ, फिल्म शागिर्द में से निकाले हैं और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर फिल्म शागिर्द निगदी सीवन शस्त्र का है। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए यहाँ से हम

The latest stuff, the latest songs आप सबके सेवा में प्रस्तुत होते हैं आज, जबकि बुधवार है 14 तारीख अगस्त।

एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज़ सुन लीजिएगा।

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक, आपको सुनाई है लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है? आप सोचिए और इत्मीनान से सुनिए, आपको ये गीत अच्छा लगेगा या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जरूर अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं।

ना मिलो हमसे, कहीं प्यार ज़्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना, मैं तो मुकेश, इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। नेगेटिव फिर सिर्फ तक 1974 का ये गीत मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकाल कर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए, क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में? अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ, बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने। चलो मिल के सुनते हैं।

रफ़ी साहब की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। यह शानदार गीत हमने पेश की फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में यह शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। VVV.5FM.NL पर आप चुन हैं, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

वाह, प्यार तो एक दिन होना था, होना था, बल अगर होना था जरूर। रफी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में से निकाल कर निकली फैफी सीमित का ये गीत और पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए ये गीत सबसे पहले आपने सुने थे पंकज उदास की आवाज़ में और वही गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुकेश जी ने ये गीत गाए थे लेकिन निकला नहीं था। तो जब ये गीत निकला पंकज उदास ने गाए हैं तो लोगों समझे वाह क्या बात है। लेकिन कुछ दिन बाद जब मुकेश की आवाज़ में लोग गीत सुने तो जान गए कि हाँ मुकेश जी ने पहले गाया था और बाद में पंकज उदास ने गाया। चलो हम आपको सुनाते हैं।

www.favnfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, बस सुनिए। पुनीत नारायण और अलका याग्निक जी, फिल्म भड़कन में से निकाल रहे, जी नहीं सॉरी, फिल्म रा

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रवि साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फकीरा में से निकाल कर 1976 निकली थी का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

है दीवाना एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं। चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई। चलो सुनते हैं। लेकिन तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बाद यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नीखन तीन सस का ये गीत है, चलो सुनते हैं।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नहीं गंधक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नहीं गंधक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चलाएंगे एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताया हो फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

जहाँ तुम्हें देंगे ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से।

चांद की जेवाई रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेफ ने से हस्त का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ हाँ लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में निगदी एन सही बंद 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी फ्रॉम द मूवी धमाल, तो से हमने पेश किए हैं। जरा सा हम देखे तो ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं,

अभी आप सुन रहे थे गुड़िया चुराना मेरा जिया। धमाल 4 से हम पेश करते हैं इसी फिल्म से फुलौरी बिना चटनी, चलो ये भी हो जाए।

0: आप सुन रहे थे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फ्रॉम द मूवी धमाल फोर से हमने पेश किए हैं। श्री तू है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।
1: वो नहीं आने वाले, वो बेवफा चला।

फ्रॉम द मूवी स्त्री तो उसे हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, सावन में लग गई आग।

फ्रॉम द मूवी जेनी विद्स सनी। इसी फिल्म से हमने पेश किए है सावन में लग गई आग दिल में रहा है। श्री तू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आज की रात।

फ्रॉम द मूवी स्त्रीतु से हमने पेश किए हैं आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। धमाल फॉर इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते, पैसा लाओ।

फ्रॉम द मूवी धमाल 4 से हमने पेश किए हैं बेसलाव, पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दीरानी।

अभी आप सुन रहे थे रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो तुम ही हो बंधु। हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल्ली से दिल तक।

0: सीता नमस्ते शे नमस्ते शे नमस्ते शे नमो नमः हरिओम। मैं एकदम भैया बिरवल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा प्यार नमस्कार, और साथ ही साथ कबूल हो पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी विश्राम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल और सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्ण भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 26 अगस्त 2020 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। यह शो उम्मीद लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप श्रोताओं को जरूर पसंद आएगा। जहाँ प्रेमियों जी साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे, और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है। मैं थील फील लेस्टर प्लेजीर के साथ पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा पाहुन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फनमान रखता फ्रेडा टेडेंस कंतोर यूरन उप दोल्ड टेलीफोन नंबर कंतोर 07-365-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं। एंड नीट वर्गेट है उनसे क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली voelt u zich altijd lekkerder bij Pahun Hindustani Radio, toch? हम से पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके विजयंती बहन जी आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। इस तौर तरीके से विजयंती बहन जी आप श्रोताओं को सदियों से सेवा करती आ रही है, यही आशा उम्मीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद विजयंती बहन जी फूल टीम की तरफ से, और आपको भी एक शुभ रात्रि नमस्ते हेल टीम। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप से भी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो, हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियां में लगे हो, जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, तो पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। ही फील्स डायरेक्टर मैं श्रीवाद सिंह। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। नित्य फरखीत है जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, और पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, थोड़ा बहुत तो हम लोगों के बारे में जरूर बातें शातें करते रहना। फनहर्त बीटर्स का आप कामयाब हुए हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। M4 Ralkhasodor बंधु, और हो सकता है कि आप कल या आज कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु। मोरखेस वीर दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन और खास करके सेल्फ विथड्रॉल थोड़ा और जोर तो से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं ना। देखो मेहनत तो है दौलत के यारी। नो इट ऑफ की फैबो तो क्लियर है, घर पर स्कूल पर काम पर नेवर गिव अ ब्रदर एंड सिस्टर। सो सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक्ड फॉर हेड लिस्टन। देश में प्रवेश हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम फैन फकंसी। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं अब सुकनार मेर वारंथ, तो आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कॉपिन फकंसी एड्रेस, तो आप भी सुनिए हम लोगों को। सो बेंट यू एंड ब्लाइव टू फनालस ऑफ द हुक द फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाक्षर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ From the movie Lalkar, composed by the brothers Kalyan ji Anand ji, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह the king of melody पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नास्ट आउट एट लीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो। देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है, खुद को आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे। आज तो प्रोग्राम में कुछ बदलाव है, फरमाइशे है और बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और हम लोगों का और आपका साथ तकरीबन 10:30 रात्रि तक चलेगा। स्टूडियो में उपस्थित है यारो जिगरी दोस्त छोटा भाई यानी हम लोगों का छोटे मियाँ द वन एंड ओनली मैस्ट्रो अनिल सरजू जी। जैसे आप लोग सुन चुके हैं सुबह तो हम लोगों का यारो का यार जिगरी दोस्त और कॉलिक द वन एंड ओनली मैस्ट्रो यूसेफ सेतु जी का आज 75वां सालगृह है ना। तो हम लोग मिल के भाई यूसेफ जी के लिए एक घंटा के लिए स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया है खास करके माशुका सीला की तरफ से, तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना। तो अनिल भाई आप भी अपना आवाज श्रोताओं को सुनाइए।
1: जी हाँ, हर एक को हमारा राम राम नमस्कार हो। जैसे आप बड़े मियाँ से भी सुन रहे हैं भाई बीरबल से, वो तो सभी कुछ तो कह दिया है, कहने तो और कुछ नहीं बाकी है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ प्रोग्राम को सुनते रहना, काफी अच्छे प्रोग्राम है। यहाँ से दम प्रतिकाल हम चलेंगे
0: एकदम बात है छोटे। तो हमेशा की तरह रवि साहब के मधुर आवाज में प्रोग्राम का शुरुआत आप सुनिए। और छोटा सा गड़बड़ी है स्टूडियो में क्योंकि हम लोगों का जो सीडी प्लेयर है ना उसमें थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन खैफ नीत वखान लेकर इम्प्रूव ही शेर फनाफंत।

कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक प्रोग्राम आप सुनेंगे। तो थोड़ा बदलाव है प्रोग्राम में, सभी को मालूम है, लेकिन एक बार फिर आप सभी से मैं कह देता हूँ, माना और जाना हुआ यारों का यार जिगरी दोस्त और कॉलिक भाईजान जनाब यूसुफ सेतु जी का आज 75वां सालगृह है और रहने वाला है इबन बुरुख शहर से। तो फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्टर फुल टीम अल अमरूपर्स मीडिया वर्कर्स और कोलिखास के तरफ से भाई यूसुफ जी को तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और ये अति सुंदर बयान के साथ सोनू निगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में की हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू भाई यूसुफ जी।

0: Of course, happy happy birthday to Maestro Yosef Setuji, जिनका आज 75वां सालगिरह है और अपने माशुका के साथ मिलकर मना रहे हैं। और ये बयान खास करके देनहांग शहर से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्ट सिलेंडर सभी कोलीगास कर्मचारियों की तरफ से भाई यूसुफ सेतु के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश कर रहे थे। अगला फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं छोटे।
1: जी हाँ दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं यहाँ से एकदम पुर्तगाल, जहाँ पे हमारा भाई यूसुफ सेतु अपना 75वां सालगिरह मना रहा है। साथ में है सीला माशुका, जो अपने प्यारे प्यारे लवली के लिए मांग किया है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं ना रहूँ, मेरे बिन तू ना रहे हो के जुदा बंधु। यूसुफ ये बात को याद रखना, आपके प्यारे प्यारे मजुका ने मांग किया अपने प्यारे प्यारे लवली के लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, भी आप सो रहे थे वादा कर ले साजना, मेरे बिन तू ना रहे तेरे बिन हम ना रहे हो कि जुदा। प्यारे प्यारे सिला मशुका ने मांग किया है अपने प्यारे प्यारे लवली के लिए, जो इस वक्त पुर्तगाल में अपना जन्मदिन को मना रहा है। 75वां साल अगर आज 75 साल के हुआ है और प्यार से अपना जन्मदिन को मना रहा है।
1: हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप हिप
2: मांग रखी है माशूक का शीला जी अपने माशूक के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यूसेफ सेतु इबन बेरुख के रहने वाला आज उनका 75वां साल ग्रह है। तो इसी खुशी के मौके पर माशूक का शीला जी ने ये सुंदर बयान को मांग रखी है। लता जी और रफी साहब जी के आवाज़ों में डफली वाले और ये भी बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ।

0: Tufli Vale a ti sundar bayan aap srotaon ke samne pesh kiya gaya aur ye bhi khas karke ipan burg shahar ke rehne wala shriman yusuf situ ji ka aaj 75va saal grah hai isi khushi ke mauke par mashu ka sila ji apne pyare pyare mashu ji ke liye ye ati sundar bayan farmaish ki thi प्यार मोहब्बत और शुभकामनाएं के साथ अगला फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं छोटे मियां रेडी
1: और इस बार मांग क्या है कितने प्यारा वादा पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का आवाज़

0: ईपम बिरख के रहने वाला योसेफ सतु जो आज 75वां सालगिरह पर मना रहा है और प्यारे प्यारे मशुका सीला जो अपने मशुक के लिए कितना प्यारा वादा मांग किया था पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। इस वक्त वो दोनों अपना जन्मदिन को पुर्तगाल में मना रहा है और पुर्तगाल में सब इस वक्त पुर्तगाल में सब है जन्मदिन को मना धूमधाम से जन्मदिन को मना रहा है। और अगले गाने को हम बड़े मियाँ को कहते हैं
1: ये बात छोटे अगला फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। अति सुंदर नगमा है एफ ग्रीन सॉन्ग फरमाइश की है माशुका सीला जी अपने माशुक यूसेफ सेतु जी के लिए जो खास करके आज 26 अगस्त 2026 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं बैतलंत में फाकांसी मना रहे हैं अपने माशुक और माशुका के साथ। और हम लोगों के प्रोग्राम ये सब पुर्तगाल में बड़े मज़े के साथ सुन रहे हैं और मान रखे हैं एक दूजे के लिए ये एवरग्रीन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जीवन मृत्यु झिलमिल सितारों का आंगन होगा रवि साहब और लता जी की आवाजों में। हैप्पी हैप्पी बर्थडे भाई योसेफ फुल टीम की तरफ से।

रास्ता सावन होगा। ये अति सुंदर बयान रफी साहब और लता जी के आवाजों में मांग रखी थी एक दूजे के लिए श्रीमान यूसुफ सेतु जी, जो अपना जन्मदिन आज मना रहा है और ये भी 75वां सालगिरह अपने माशुका के साथ एक दूजे के लिए ये अति सुंदर बयान को मांग रखी थी। अगला फरमाइश आपके सेवा में मैं कहने वाला हूं आप सभी से कि अरे बड़े

0: सुनाओ ना।
1: जी हाँ देखो देखो देखो देखो देखो मशुका वो आ गया है एक दूजे के लिए। भाई यूसुफ ने मांग किया है एक दूजे के लिए, आ तू आ जरा दिल में आदम नाइटी मुकेश। कहते हैं हम इस बार मांग करेंगे अपने मशुका के लिए। चलो हम सब सुनते हैं यहां से दम पुर्तगाल तक, आ जरा तू आ दिल में आ नाइटी मुकेश की आवाज।

0: जी हाँ दोस्तों, भी आप सो रहे थे, आ तू आ जरा दिल में आ, नायतू मुकेश की आवाज और लता मंगेशकर। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहे, जिस हाल में रहे हमारा यूसुफ सत्तू, उसे अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, मालिक उसे हर एक चीज़ दे जो उसे इस वक्त चाहिए। भगवान उसे मत भुलाना, अल्लाह ताला हर चीज़ उसे देना जो उसे चाहिए, तंदुरुस्ती देना। जहाँ भी रहे, जिस हाल में रहे, बहुत अच्छा से इस वक्त वो अपना जन्मदिन को प्रतिहाल में मना रहा है। मैं बस यही कहूँगा बड़े मियाँ कि हर
1: इंशाल्लाह। छोटे मियाँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इपन बुर्ग शहर के रहने वाला जनाब यूसुफ सत्तू जी का आज 75वां सालगिरह है और इस खुशी के उपलक्ष्य पर ये अति सुंदर बयान एक दूजे के लिए मांग रखी है। मिलके सुनते हैं ये सुपरहिट सॉन्ग किशोर दा और लता जी, स्पेशल फॉर यूसुफ एंड सीला, एक दूजे के लिए। देखा एक ख्वाब तो वो सिलसिले हुए, क्या बात है।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया और ये भी खास करके ईपनबुर शहर के रहने वाला जनाब सेतु यूसेफ सेतु जी का आज 75वां सालगिरह है और इसी खुशी के मौके पर एक दूजे के लिए ये अति सुंदर बयान को फरमाइश कर रहे थे और ये भी खास करके अपने 75वां सागर के उपलक्ष्य पे, जो ये दोनों मिलकर पोर्टिकल में कुछ फैमिली के साथ मना रहे हैं। तो छोटे मियां आगे,
1: तो हम चलते हैं लेके एक बार और मशुका जिला और यूसेफ सेतु के लिए, जो इस वक्त पुर्तगाल में पूरा फैमिली के साथ अपना जन्मदिन को मना रहा है। और भूल मत जाना फैफन सैफन तक यार के भाई ले आज हमारा भाई मामू यूसेफ सेतु, और इसलिए वो सब पुर्तगाल में हैं। हम आपके लिए चलाते हैं लता मंगेशकर और तलत के एक बहुत बहुत ही अच्छा गाना है जो आप लोगों ने मांग किया एक दूजे के लिए।

0: कहते हैं गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका चमका ये दिन का उजाला, ये भी चला गया है एकदम से पुर्तगाल, जहां पे यूसेफ सत्तू अपना फैफन सीवन तक 75 साल घर मना रहा है अपना पूरा फैमिली के साथ, और जहां प्यारे प्यारे मसूका जिला भी मांग किया है अपना मसूका के लिए, एक दूजे के लिए मांग किया था, गया अंधेरा हुआ उचाला।
1: अगला फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया शुक्रिया छोटे, और आप श्रोताओं तो मालूम है, और एक बार फिर मैं कह देता हूँ, यारों का यार और जिगरी दोस्त को लिखा फनोंस द वन एंड ओनली ईपन बर्ग शहर के रहने वाला मैस्त्रो यूसेफ सेतु जी का आज 75वां जन्मदिन है। तो इसी खुशी के मौके पर एक दूजे के लिए ये अति सुंदर बयान को फरमाइश किए हैं महेंद्र कपूर और लता जी के आवाजों में। सुन ए बहारे हुस्न, क्या बात है, क्या चॉइस है, दनावा बिग बिग हिप हिप हिप।

0: बात है और होना भी चाहिए क्योंकि एतबार पे तो दुनिया टीका है ना। इपनबर्ग शहर के रहने वाला जनाब यूसुफ सेतु जी का आज 75वां सालग्रह है और इसी खुशी के उपलक्ष्य पर ये अति सुंदर बयान एक दूजे के लिए फरमाइश कर रहे थे और हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं आखिरी फरमाइश तक जो आप सभी के सेवा में छोटे मियां सुनाएंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, एक आखिरी फरमाइश चलेगा जो हमारा यूसुफ सेतु का 75वां साल ग्रह आज जो पुर्तगाल से अपना जन्मदिन को मना रहे हैं। सभी कोलेखा के नामस अल कोलेखा फाहुन हिंदुस्तानी रेड डायरेक्सिस हर एक जो हमारा कोलेखा है फाहुन के तरफ से और हमारा यूसुफ सेतु भी एक हिस्सा बन चुका है हमारा फाहुन का। एक आखिरी गाना हम लोग चलाएंगे। हम सोचते हैं कि यूसुफ इस प्रोग्राम को सुनते हैं, आप वहाँ से प्रोग्राम सुनते तो एक आखिरी गाना चलेगे। शिला मशुका आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ एक आखिरी गाना चलेगा, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे चलाते हैं।
0: रवि साहब जी के मधुर आवाज में और खास करके हमारे सभी साथियों की तरफ से ये महान साथी के लिए और वो है दवाने डौली यूसुफ सेतु जी। जियो जियो हजारों साल ब्रो।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे
1: सुर में गाना सीखिए पद्मनिशा ऐप के साथ।
0: एक आखिरी गाना हमने चलाया है योसेफ सत्तू के लिए, जो इस वक्त पुर्तगाल में अपना जन्मदिन को मना रहा है। इस वक्त रात हो चुका है, उसका जन्मदिन तो मन चुका है और मना चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद हो, जैसे भी है रिसाल में है, अल्लाह ताला आपको हर एक दुख से बचाए, हर एक जगह से आपको बचा के लाएगा वापस। और माशुका शीला को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, जो इस प्रोग्राम को हमारा साथ बांटा है, हमारा साथ सुना है, और जो जो इस प्रोग्राम को सुना है हर एक को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ से हम जहूर अलविदा कहते हैं, हमारा बड़े मियाँ दस बजे आपके साथ रहेगा।
2: धन्यवाद छोटे, तो यहीं तक था आज का ये हसीन स्पेशल, जो खास करके श्री योसेफ सेतु जी के जन्मदिन सागर के उपलक्ष पर हम लोग पेश किया, मिल जुल के फरमाइशे देने और सुनने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं, कहीं जाना मत यारो, आफ्टर द ब्रेक।
3: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं के बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाटोलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल ओबिलोबियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाटोलिक बदंत फॉर हेट लेस्ट्रम। तो जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूं कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा। यारो आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल फन मांडा टॉट फ्रेडा ऑप द फोल्गन टेलीफोन नंबर स्टेडेंस कंटोर उर कंटोर कतार का नंबर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। तो जो भी रेडियो का काम होना देंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो यूवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में यानी कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में चर्चा करते रहना और रिक्लाम बनाते रहना साथियों, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। सभी जानकारी 07-362-2077 पर आप तार करें कंटोर 07-362-2077 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-362-2077। आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाएं। एनाउंसलेट फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एन वे हैव ओक ऑन से एक कराओके क्लब है वार हिल फील्ड्स सिंगर्स एंड सिंगरेस फॉर यू लाइव गाँ ऑप्ट्रेडन। Dus volg onze social media's en ook die van onze omroepers. Dan hoort u of ziet u heel gauw waar wij live voor u gaan optreden. En dan bent u van harte welkom. तो आप यहाँ कर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहे है वो जो बन चुका है आप यहाँ कर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने Dan wordt je automatisch doorverbonden naar onze teamleider, de one and only maestro Johnny Number One. तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आज से तकरीबन कुछ मिनट पास हो गया था 9 बजने तक आप एक अति सुंदर स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम सुन रहे थे हंस फरमाइश के जरिए, जो गुजारिश किया गया था फरमाइश किया गया था डोर यार योप उस एरवाद ब्रूडर एंड कोलेगा द वन एंड ओनली जोसेफ सेतु 75 यार ओल्ड वंदाग geworden en viert het samen met Mashuka in het buitenland. Natuurlijk hopen wij dat u naar al dat mooi en het grappige gedeelte van ons hebben geluisterd daar in Portugal. Oude programma Age Berhate, hey, nog alle zegeningen van boven voor jullie alle twee en maak er wat leuks van in Portugal.
साथियों, बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म पॉकेट मार तक, और फिल्म पॉकेट मार जो रिलीज किया गया था 1974 तक में, सभी गाना फिल्म पॉकेट मार का मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। तो अब लेकर चलते हैं आप सभी को जो एक फिल्म ऑल्सो जो रिलीज किया गया था इन द डेट बोतना न चल रहा फिल्म दुख भंजन तेरे नाम। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया था सुनील दत्त और राधा सुलैया, दारा सिंह जी भी इस फिल्म में काम किया है, लायरिक सभी गाने लिखे इंद्रजीत और हसन पुरी, उस जमाने के महान संगीतकार पंजाब का एस मोहिंदर के साथ है। तो उसी फिल्म में से दुख भंजन तेरा नाम में से आप नगमे सुनिए, और ये अति सुंदर बयान रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में कि दुख भंजन तेरा नाम टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी, मिल के सुनते हैं ये अति सुंदर बयान को।

song, title song from the movie Dukh Bhanjan Tera Naam, Ravi Saab ji ke beautiful awaaz mein, S. Mohinder ke saaj aur Shabat ji ka likha hua hai ye sundar bayan. Agla bayan ki taraf badhte hai saathiyo, from the same movie, ghadi ki taraf dekhta hu to 21 मिनट गुजर चुका है 9 बजकर, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 26 अगस्त 2026 का यह हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. गीत और गजल ओथ इज गोथ नामक कार्यक्रम और नगमे चल रहे हैं जिन फिल्म्स में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए है. द ही मैन, द हिट मैन फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. अगला बयान, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द सेम मूवी दुख भंजन तेरा नाम. ओ बाबला एही के हर कमाया, ब्यूटीफुल सॉन्ग रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में एक बार फिर.

van oude satisate agri song uit de film Duk Bhanjan Teranam. Manna Deji ke Beautiful Awaaz mein die sundar bayan aap sun rahe the, gecomponeerd door S. Mohinder. Agla bayan ki taraf badhte hai saathiyo, aur dekha jaye is film jo aap जिन में गाने चल रहे थे दुख भंजन तेरा नाम, तीन गाने सिर्फ इस फिल्म में था जो मैं तीनों आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक और मूवी जो रिलीज किया गया था 1947 तक में, फिल्म दो शेर। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है हीरोइन गौरी वर्मा जी के साथ, और राजेंद्र कुमार भी इस फिल्म में काम किया है। महान संगीतकार उस जमाने के ग्रेट सोनिक ओमी के साथ है और वर्मा मलिक जी के अल्फाज है। एक अति सुंदर बयान है द मूवी दो शेर, मैं रख चुका हूं प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए। गाने का बोल है जत जन की शराबी बनिया, क्या बात है, मेरे ख्याल में पंजाबी सॉन्ग। खसोम दौर एक बार फिर शुरू का बादशाह रफी साहब जी।

Beautiful Punjabi song aid film do share gaane wale the Padma Shri Muhammad Rafi Sahab ji aur us zamane ke mashhoor gaane wali Meenu ji. Ghadi ki taraf dekhta hu saathiyo to 35 minute guzar chuka hai 9:00. Agla bayan aid film do share ek baar fir वही महान लेखक वर्मा मलिक जी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान का कॉम्पोनेट और सोनिक ओमी और गाने वाले है शुरू का बादशाह रफी साहब जी एक बार फिर प्रोग्राम में तिल तिल द लेखा फिल्म दो शेर ने कदम फिर इन सीक्वेंस.

मिलिया अच्छा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुन रहे थे आइड फिल्म दो शेर। महान संगीतकार उस जमाने के दगड़े सोनिक ओमी के साथ पर और लेखक था वर्मा मलिक जी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 10 मिनट रह गया है 10 बजने में। अगला बयान फ्रॉम द मूवी दो शेर एक बार फिर वर्मा मलिक का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कॉम्पोनेट और सोनिक ओमी और सुनाने वाला है आप सभी को सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब विद सुपरहिट पंजाबी सॉन्ग रंगीला ये पंजाब रफी साहब।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

स्टानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ तो पूरे 10 का वक्त हो चुका है। फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। है ना तिलक वर्क्स boys and girls, social lobby and blessings to all of you, and natuurlijk bedankt voor het luisteren. जो भी रेडियो का काम हो ना, देखन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे 07-35-62-47 पर आप तार करें, टेनेंस कंटोर यूरो फन मंडाग तो फ्राइडाग। स्टूडियो का तार का नंबर है 07-35-62-47। जो भी रेडियो का काम हो ना, थैंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, बेन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है, और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना ना हम लोगों के बारे में, क्योंकि मिलजुल के हम लोग यहाँ काम करते हैं और आप सभी के खिदमत करने के लिए, तो आप सब है तो हम लोग भी है ना। बेन दिनों के लिए फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश में थी, निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। En we hebben ook ons eigen karaoke clubje. Over links en rechts heb ik al gehoord. Als alles volgens planning en schema gaat, dan gaan we vanaf morgen starten. Vanaf 5:30 een uurtje live karaoke voor jullie op de radio te doen. En dan zou ik ook hierbij willen zeggen dat Fahun Hindustani Radio dan de primeur heeft in Nederland, karaoke live, een uur lang. En dan allemaal door onze eigen omroepers en omroepsters. Hoe fijn kan dat niet zijn? Zero programma, Sunterena Satio. Morgen 5:30 gaat het grote werk beginnen, hè? के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ। सभी नगमे मैं सुना चुका हूं, फिल्म दो शेर का जो रिलीज किया गया था 1974 में। अब लेकर चलते हैं एक और जबरदस्त मूवी जो रिलीज किया गया था 1974 में, फिल्म दोस्त फ्रेंड माती में माती 1974 में। और इस फिल्म में काम किया है धर्मेंद्र जी met zijn tweede vrouw Malakai Husne, de great beauty queen, dream girl Hema Malini ji ke saath. Maha Jigri Dost Shatrughan Sinha bhi is film mein kaam kiya hai. Maha lekhak Anand Bakshi ke alfaze hai. Aur the great sangeetkar jodi Lakshmikant Pyarelal ke saaj. कुछ नगमे किशोरदा है, लता जी है और शत्रु जी के कुछ अल्फाजे आप सुनेंगे। इस फिल्म में बहुत खुजली लूप लेके तब तीने को गाना पहले रिचा, तो वो गाने मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं जो सभी काफी जबरदस्त है, तो मिल के सुनते हैं ये अति सुंदर बयान जो किशोरदा संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह आप सभी के खिदमत में सुनाने वाले हैं। फैशन टू एट द फिल्म दोस्त, गाड़ी बुला रही है।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है, वंडरफुल सॉन्ग, गाड़ी बुला रही है, सीटी भी बजा रही है, फ्रॉम द मूवी दोस्त 1974, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ और किशोर दा के ग्रेट आवाज में। दस मिनट गुजर चुका है साथियों, कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, फरमाइश के जरिए कुछ शेर्स कम आज सुनने को मिलेंगे। अर्ज क्या है यारो, कुछ आखिरी शेर्स है तुम्हारी एक छोटी सी तारीफ पर, तुम्हारी एक छोटी सी तारीफ पर ये दिल खुशी से कई कहानियां बना लेता है। गिला एक दफा किया जाता है, गिला तो एक दफा किया जाता है, फिर अपनी बात की अहमियत देखी जाती है।

तेरी तरह तुझे तालाब हो मेरी तरह और मैं मशरूफ हो जाऊं तेरी तरह। फर्क तो पड़ता है ना यार, फर्क तो पड़ता है ना यार कि मैं दिल से बात करूं और तुम अपनी मर्जी से, ये भी होता है। यही तो मजा है साथियों, दो लाइन शेर शायरी का कि इतने कम लफ्जों में पूरी कहानियां लोग सुना देते हैं। हम जो बाहों में आ गए तो होश

a ricerca ti ho che mi disse che cari grammi pul he gulab ka nasha hai sharab ka hamara to kat gaya ab katega aapka kaisa phool hai gulab ka nasha hai sharab ka bhi hamara to kat gaya ab katega aapka kaise. To ye tha kuch aakhri shairs aaj ke mere hisse ke karyakram mein. 13 मिनट गुजर चुका है साथियों, 10 बजकर और वक्त भी धीरे धीरे करीब आने लगा है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान एक फिल्म दोस्त नेगेटिव फिर तक एक बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी को लाते हैं प्रोग्राम में आनंद बख्शी के अल्फाजे पर. वो सुना रही है आप सभी को लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साँच पर दुनिया जब जलती है.

सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। और ये भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों। एड फिल्म दोस्त 1974 लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर आप सुनिए रफी साहब जी के आवाज में एक बार फिर वही मधुर आवाज। आ बता दे ये तुझे कैसे, फ्रॉम द मूवी दोस्त कंपोज ऑफ अनीश बाय द कपल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स कपल।

अती सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया फ्रॉम द मूवी दोस्त 1974 जबरदस्त सॉन्ग गकम्पोनेर्ड अरेंज एंड कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी उस जमाने के द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और देखा जाए ये फिल्म को डायरेक्ट किया है दुलाल गुहा जी और काम किया है हेमा मालिनी शत्रुघ्न सिन्हा जी इस फिल्म में।

0: तो साथियों धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को।
1: बता दे
0: ये अशोमीद लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम और एक घंटा का जो प्रोग्राम हम लोग हास्यमय का स्पेशल मिल के अनिल भाई के साथ हम लोग पेश किया, ये अशोमीद है कि हम लोगों का पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को जरूर पसंद आया हुआ होगा।

0: से डरता है अपन।
1: और ये आवाज शत्रुघ्न सिन्हा जी का।
0: करता है अपन परेशान आंख सही गुल नहीं खाक।
1: अगर फुर्सत कभी मिले तो ये फिल्म को जरूर देखना, क्योंकि ये दोस्त दो दोस्तों के बारे में जाता है और इसका जो मीनिंग है, इस फिल्म का जो संदेश हैगा, बहुत ही जबरदस्त है, तो जरूर कभी देखना। गाने तो आप सुन चुके हैं, कितने सुपरहिट सॉन्ग्स हैं।
0: हाँ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। हाँ बता दे
1: साथियों, मुझे आप सभी इजाजत दे और हमेशा की तरह जाते जाते तो कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ। और होगा अगर सब कुछ ठीक ठाक गया तो मेरे ख्याल से बिहान कल हम लोग कुछ मिलजुल के आप सभी को सुनाने वाले हैं। तो अपना रेडियो कुछ 5 बजे से और 6 या 7 के बीच जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, तो जरूर इसके दरमियान कुछ ना कुछ होने वाला है। काफी गर्म महसूस हो रहा है स्टूडियो में। स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था 8 बजे तो तापमान बाहर का तकरीबन 24 और 25 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था और अब तो पसीना निकल रहा है स्टूडियो में। फराल जब खिड़कियां बंद कर दिली स्टूडियो हुआ के ततनी हवा ना आवे तो उन बगलिया हम लोग के स्टूडियो हुआ में को ब्रीद कनाल स्ट्रोम हुए रस अफेंटूरन जब हुआ जब वाई हुए रा कई खेत कूल वेन मन मुझे तराम फन स्टूडियो वेट ओपन से नोट आज मत फिर फुल हम हानी इस एक्ट सुपर वार्म गवर्न वर्ड इस laat maar die deuren van het studio even een beetje op een keertje om alles, het warmte van al die apparatuur een beetje te kunnen verspreiden. En een probleempje, laatst hebben ze gewerkt aan de mengtafel, dus ik denk dat die CD-speler niet goed is aangesloten, want hij krijgt signalen, hij geeft signalen, maar er komt geen geluid uit. Dus, hij is werken voor onze technici. Dan moet je iets als het deze

जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूं, आदत से जो मजबूर हूं ना, क्योंकि छोटा मोटा गायक तो हम लोग भी है ना। दर हेमंत कुमार के याद में कुछ ना कुछ गुनगुनाता हूं।

अखंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: तो आप कार्यक्रम में हैं जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है www.fahunfm.nl पर। चलिए कार्यक्रम में हम चलाते हैं, या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

तुमको हमसे प्यार है, किस तरह से प्यार किया जाता है, यही कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं। अब प्यार की सिलसिला अगर है ही है तो हम आपको बताते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी हाँ, ये उदित नारायण कह रहा है फिल्म मोहरा में कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और वगैरह वगैरह कैसे प्यार किया जाता है। चलो इन्हीं लोग से सुनते हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को प्यार करना नहीं आता, तो सीख लेते हैं कुछ भी।

अच्छा, हमने भी सीख लिए कि प्यार कैसे किया जाता है। उम्मीद है आप भी सीख गए होंगे, और अगर आप जानकारी थे नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है। चाहे अगर प्यार की बातें तो हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि देखते हैं इस तरह से।

फिल्म गुमनाम में से निकाले हैं। ये नया गुमनाम है, ये मनोज कुमार के डरावनी गुमनाम नहीं है, ये नया गुमनाम है। इसमें उदित नारायण और श्रेया घोषाल मिल के आपको ये गीत सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

फार होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

चमका चमका सुबह का तारा। हाँ जी, आपको सुनाए तलत जी और लता जी। सुनने वालों, चाहने से प्यार नहीं मिलता, चाहने से प्यार नहीं मिलता, हवा से फूल नहीं खिलता। प्यार नाम मोहब्बत है, प्यार नाम होता है विश्वास से, बिना विश्वास सच्चा प्यार नहीं मिलता।

मुझे ऐसी जगह ले चल, फिल्म का नाम आरजू। आप सुनाए आपको तलत महमूद जी ने ये सुंदर सा गीत, आपने सुने सुने वालों, और ये भी आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से जो तनहा न्यूतन स्त्रात नंबर 25 पर है। बहुत खूबसूरत वो रात होती है, बहुत खूबसूरत वो रात होती है जब तुमसे दिल की बात होती है।

不大。

तरफी जी से सुने आपने हो दुनिया के रखवाले। फिल्म का नाम बैजी भौरा और नौशाद इसमें अपना भी कमाल जो सुनाए। इस फिल्म में काम की है मीना कुमारी, साथ में भारत भूषण जी। संसार से कभी आशा मत रखना, संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना।

हाँ बस है नाम मेरा जल की धारा, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा सुने वालों। हाँ मैं कहती हूँ जरूर से प्यार बढ़ा मेरी तरफ और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, जो यहाँ से आपके इस खूबसूरत ठंडी ठंडी बुहार जो चल रहा है, मौसम हसीन है और यहाँ से आपको यादें ताज़ा कराते हैं अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और कहता है कि मोहब्बत इंसान को जीना सिखा देती है, मोहब्बत इंसान को जीना सिखा देती है, वफा के नाम पर मरना सिखा देती है, वफा के नाम पर मरना सिखा देती है। अगर मोहब्बत नहीं की, अगर मोहब्बत नहीं की है तो करके देखना, ये जालिम हर दर्द सहना सिखा देती है।

ये हमारा तुम्हारा तो गंगा की मौज और जमुना की धारा, मैं हूँ द किंग मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में आपने सुने। एंड सुनने वालों, हम आपको लेकर चलते हैं बैक टू द फ्यूचर, इस महकती हवाओं के साथ आपको हम लेकर चलते हैं। आलमाल खसलक तेर्थ फॉर यू आलमाल

0: चाहने से प्यार नहीं मिलता, हवा से फूल नहीं खिलता। प्यार नाम होता है विश्वास, प्यार नाम होता है विश्वास, बिना विश्वास सच्चा प्यार नहीं मिलता।
1: कौन रतन? रतन कहाँ? रतन तो शहर चला गया।

पहले देखें गीता दत्त जी से आपने सुने सुने वालों मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। हाँ किस पे आ गया है आप तो खुद अपने ही दिल से पूछो कि आपके दिल किस पे आ गया है। और फिल्म का नाम हम देखें तो भाई भाई, हाँ फिल्म का नाम है भाई भाई। और नेकदिन सेसफेफ तक पे ये गीत ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है और कंपोजर है मदन मोहन जी। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की, उसे ऐसे जियो सुने वालों, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी को कि जिंदगी तुम्हें नहीं बल्कि जिंदगी को तुम मिलो हो। जिंदगी ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं बल्कि जिंदगी को तुम मिलो हो। जिंदगी को ऐसे ही जियो।

हंसते झूमते गाते ही अपने ही जिंदगी बसर करे कि आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आपको लेकर इस मोड़ पर हम आ गए हैं और कहते हैं कि ऐ दोस्त तुम पे लिखना कहाँ से शुरू करूँ, ऐ दोस्त तुम पे लिखना कहाँ से शुरू करूँ, अदा के करूँ या हया से करूँ, तुम्हारी दोस्ती इतनी खूबसूरत है, हाँ जी तुम्हारा दोस्ती इतनी खूबसूरत है, पता नहीं कि तारीफ़ ज़ुबान से करूँ या दुआ से करूँ।

0: जीवन में पिया बस तेरा साथ रहे है, साथ रहना चाहिए। मुझे अपने कल की फिक्र आज भी नहीं है, मुझे अपने कल की फिक्र आज भी नहीं है, लेकिन तुझे पाने की चाहत, लेकिन तुझे पाने की चाहत कयामत तक रहेगा। ये सब सुनहरे गीत सुनने वालों आप ही के लिए।
1: रतन तो शहर चला गया।

हाँ जी, पहला कदम जो रखी है तो उसे जरूर से निभाना पड़ेगा आखिरी तक। हो सके तो बहुत अच्छा होगा। कुछ नशा तेरी बात का है, कुछ नशा तेरी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हमें तुम यूं ही पागल मत समझो, हमें तुम यूं ही पागल मत समझो, ये दिल पर असर पहली मुलाकात का है।

बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। ना कोई बता पाया है, ना कोई बता पाया है, ना ही कोई बता पाएगा, मेरी मोहब्बत इतनी गहरी है, मेरी मोहब्बत इतनी गहरी है कि गूगल भी शर्मा जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये सब सुनहरे गीत आप ही के लिए चुनकर और यहाँ आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुनाया जाता है। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है, हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले, बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई।

तुम्हारे नाम को होंठों पर सजाया है मैंने, तुम्हारी रूह को दिल में बसाया है मैंने, दुनिया आपको ढूंढते ढूंढते ही

सुनो बस इतना है कहना, सुनो बस इतना है कहना, हमेशा मेरे दिल में होकर ही रहना।

है कहाँ और दर्द कहाँ, क्या फरमाए क्या फरमाए। अच्छे अच्छे गीत यहाँ आपके लिए सेलेक्ट कर कर और चला रही हूँ। तुमसे रुट जाने का मज़ा ही कुछ और है, तुमसे रुट जाने की मज़ा ही कुछ और है। ऐ सनम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तेरे बार बार मनाना। क्या बात है,

यहाँ से। मैं चुप रहूँगी फिल्म का नाम है जो हमने यहाँ से और सुने हैं। हाँ जी, और हम देखे तो जी बात ऐसी है, हाँ बात ऐसे है कि तेरे हुस्न पे कुर्बान हो जाऊँ, तेरे हुस्न पे कुर्बान हो जाओ, तेरे बाहों में बेजान हो जाऊँ, ऐसे नज़ाकत है तेरी सूरत पे, ऐसे नज़ाकत है तेरी सूरत की कि मैं तो तेरा गुलाम हो जाऊँ।

भरे कितने प्यार भरी आवाज में हमको सुनाई है रफी जी ने, जरा सुन ओ हसीना ए नाजनी। उनकी चाहत में हम कुछ इस तरह बंधे हैं कि वो सांस वो साथ भी नहीं और हम अकेले भी नहीं। मैं दिल हूँ और तुम सांसें हो मेरी, मैं जिस्म हूँ और तुम जान हो मेरी, मैं चाहत हूँ और तुम इबादत हो मेरी, मैं नशा हूँ और तुम आदत हो मेरी।

मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही। लता जी और रफ़ी जी की आवाज़ में हमने यहाँ सुने फिल्म का नाम हमराही है। कभी तुम ये साथ ना छोड़ना, कभी तुम ये साथ ना छोड़ना, कभी तुम ये साथ ना छोड़ना, कुछ सोच कर कदम ना मोड़ना। बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, इस उम्मीद को तुम कभी

सुनने वालों, यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं सुनने के लिए श्री मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में कि जिंदगी क्या है, गम का दरिया है।

से तस्वीर कहाँ बनती है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है।

वो भोली सी याद आई है। मेरे दिल का तू वो गाना है, मेरे दिल का तू वो गाना है जो दिल से मुझको गाना है। तुझे तुझे धड़कन में बसाना है, मेरे दिल तुझ पे ही मरता है, मेरा दिल तुझ पे ही मरता है। तू हकीकत है चाहे फसाना है, बस मेरा जीना का बहाना है, जीने का तरीका तुझसे मिलकर मैंने जाना है।

इतनी सुंदर से कहा है कि मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। तो आप मिल गए तो दर्द दिल का पता ही चल गया कि आपके सीने में भी एक दिल धड़कता है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालात से मजबूर होता है। हम तो बस इतने जानते हैं, हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है।

वापस से निकाला गया है, जो पिक्चराइज किया गया है नेखंतिन नेखनन सेस्तख में, और लता रफी जी के आवाज़ में हमने यहाँ से सुने। गुजरती है कुछ रातें ऐसी भी, गुजरती है कुछ रातें ऐसी भी, खुद खुद से बातें करते हैं खुद के बारे में।

सारा दिल ये पुकारे आजा। लता जी की आवाज़ में हमने यहाँ सुने फन वालों, और फिल्म का नाम है नागिन। जी हाँ, फिल्म नागिन से हमने सुने लता जी की आवाज़ में। सुने वालों,

पर मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखी हूँ, साजन बिना सुहागन की मधुबन खुशबू देता है। जी हाँ,

या बड़ी हो सकती है, कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसे होते हैं।

रोटी कपड़ा और मकान से निकाला गया है जो मुकेश जी और लता जी के साथ यहाँ से हम सुने हैं। सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ, सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं।

कि माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, आपके ऐसी ताकत बन जाएगी कि आपको पहाड़ भी रास्ता देगा।

सुनने वालों के खिदमत में आपको हम यहाँ से बहुत प्यार के साथ यहाँ पे आपको हम जी हाँ यहाँ से हम आपको स्वागत कह रही हूँ। शुरुआत करने से पहले ये जरूर कहूंगी कि हर पल में प्यार है, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशियाँ है। जी लो तो जिंदगी है, जी लो तो जिंदगी है, खो दो तो यादें है। आपको हम यहाँ से इस खूबसूरत दिवस में स्वागत कर रही हूँ। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम

0: बहन से खाने भी नहीं लोगे, चलो।
1: डांटो मत सुरेश, ये भूखे हैं, हमारे पास इतना खाना है, क्यों ना हम बांट लें।

फिल्म तकदीर से निकाला गया है, लता जी की आवाज में हम यहाँ से और श्रवण की है। खूबसूरत दिवस में आपको लेकर चलते हैं फिर से एक बार सुनने के लिए, लता जी के आवाज में साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी जी।